दास हमारी पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना।

गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय बुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती।

अपारे हरियं करियं दर्दमे अकामे पुजं प्रयार शांद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र पासे चतर चक्र मानिया चतर चक्र दानिया चाचरी शांद ना सत्र नम

परमाथे अजूनी अमूनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेके आकर्मंग आपरमंग आगंजे आलेखे पुजंग प्रयार शांद नमस्तुल परनामे सुमस्तुल परनासे आगंजल अनामे समस्तुल निवासे नरकामं विबुदे समस्तुल सरूपे गोकर्मं वरणासी सुधर्मं विबुदे सदा सदानंद सत्रंग वरणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाए बबुदे गजाए बगनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुवंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते